उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इस्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
6: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
3: 101 FM.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
3: 101 FM.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
6: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
7: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.
8: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज़.

सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

0: listening to FM 101, a Balibali Oshawa Shawa.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: And now you are tuned into
3: FM 101
4: किसे छोड़ा।

0: आयु कितनी देर से?
1: I'm on the way यार, बस आधा घंटा दे।
0: चल बेटा जल्दी कर।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: And now you are tuned into
3: FM 101.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतालिका सूबाई महकमों के साथ मौसर राबिता बरकरार रखने की हिदायत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान 10 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। खालिस्तान के क्याम के लिए अमरीका में आज रेफरेंडम होगा। मारूफ कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 29वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को मुतासरीन सैलाब को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुतालिका सूबाई महकमों के साथ मौसर राबिता बरकरार रखने की हिदायत की है। खुजदार बायराड लट और जिंक मंसूबे में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआविनत से अहम पेशरफ्त हुई है, जिसे 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला खारान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान पितनाल ख्वारिश के सात दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का छठा मैच आज मुल्तान में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: मेरी गल सुन इत्थे बे
1: This short commercial break. Stay with us.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: faire pour ça.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
5: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Oshawa.

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने NDMA के मुतासरीन सैलाब को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुतल्लिका सूबाई महकमों के साथ मौसर राबिता बरकरार रखने की हिदायत की है। खुशदार बाराइट लेड और जिंक मनसूबे में खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआविनत से अहम पेशरफ्त हुई है, जिसे 20 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के जिला खारान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान फितनाल ख्वारिज के साथ दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 6th मैच आज मुल्तान में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान व्हाइट्स के दरमियान खेला जाएगा।
1: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: Keep smiling and drive carefully, okay?
3: Oh.

0: Free socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: सुनते रहिए FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You're listening to FM 101, a bale bale or shower shower.
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

लो जी इतना टाइम दिता, अजे तक तुसा कोई नहीं सोचे हा मैं मर जावा गुड़ खा के, इदा तो नहीं करीदा ना। सोचे पिया ते बंदा गया। ओ भाई एडे औखे सवाल तो मैं कदी नहीं किते, तुहानू पता इंटरटेनिंग प्रोग्राम है, उहदे विच इंटरटेन हुंदी है। अज का जनाब बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ी चस आनी, बड़ा स्वाद आना, क्योंकि खवातीन के अपने ख्यालात होने, मर्दों के अपने ख्यालात होने। अजा साडा टॉपिक ने कि जनाब तुसी लिबास दे विच अपने कपड़े वास्ते किहड़ा कपड़ा किहड़ा रंग जिहड़ा ज़्यादा पसंद करते हो, यानी तुहाडा जिहड़ा ड्रैसिंग है या ड्रैस है या लिबास है उहदे विच ज़्यादातर किहड़े कलर नूं पसंद करते हो, किहड़े कलर के सूट ज़्यादा तुसी जिंदगी दे विच पाए ने या पाए हुए ने या रखते हो, या हर दफ़ा दिल करता किस कलर का सूट तो जरूर लेना है, तुहाडी सूटिंग दे विच किहड़ा सूटेबल कलर है जिहड़ा तुहानूं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, या अपने कपड़ियां दे विच अपनी ड्रैसिंग दे विच सूट दे विच किस रंग नूं बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, मैनूं दसण वास्ते मेरा नंबर है 04221100101। इस ते तुसीं दसणा है कि जिहड़ी तुसीं सूटिंग करदे हो, कपड़े पहिंदे हो, उहदे विच कपड़ियां दा किहड़ा रंग है जिहड़ा सब तों ज़्यादा तुहानूं अट्रैक्ट करता है, सब तों ज़्यादा तुहानूं पसंद है। रुबीना जट्टी साडे प्रोग्राम दे विच शामिल ने, प्रोग्राम नूं सुणदियां पईआं ने, पसंद कीता है, तमाम लिसनर नूं सलाम आखे ने, दुआवां दित्तियां ने और चाहतां मुहब्बतां दा इज़हार कीता ने। रुबीना जट्टी साहिबा तुसीं जींदे रहो, खुश रहो। जमाल भाई साडा प्रोग्राम सुणदे पए ने, जमाल भाई तुहाडा वी शुक्रिया, मेहरबानियां, प्रोग्राम दे विच तुसीं शामिल होए, और उम्मीद करदा कि फिर भी मेरे प्रोग्राम दे विच आंदे रहोगे, हमेशा मेरे नाल रहोगे और मेरे प्रोग्राम दे विच सांझ पैंदे रहोगे, मेरा माण वधांदे रहोगे, और साडी थकावट जिहड़ी है तुहाडे आवण नाल खत्म होंदी है, वह थकावट हमेशा खत्म होंदी रहेगी। 4471 ते आओ तां तुहाडी मर्जी, फेसबुक ते आओ तां मर्जी, या फिर कॉल करो तां मर्जी। 2:30 बजे लाइव कॉल होएगी, उस तो पहले ऑफ एयर कॉल, और दसना है कि ड्रैसिंग दे विच सब तो फेवरेट कलर, सब तो पसंदीदा कलर तुहाडा जिहड़ा है वह किहड़ा, ते मैं तुहानूं इक सोहणी जिही मिठी जिही प्यारी जी आवाज़ सुना लगा, और यकीनन तुहानूं पसंद आएगी, और मैं सुन के दसना कि ये आवाज़ वाकई अच्छी है या सिर्फ मैं कहना कि आवाज़ अच्छी है। सुन के दसो, मेरे नाल रहो, तो टॉपिक ते सांझ जरूर पावो।

0: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थोड़ा जहा टाइम रह गया, कोई 6-7 मिनट या 8 मिनट रह गए, उस तो बाद लाइव कॉल का सिलसिला शुरू होना है। अज का साडा टॉपिक जिहड़ा है कि जिहड़ी तुहाडी ड्रैसिंग है, ड्रैसिंग दे विच ज़्यादातर तुसी किस कलर नूं पसंद करते हो, किहड़े रंग दी ड्रैसिंग तुहानूं ज़्यादा पसंद है, किहड़े रंग दे कपड़े तुहानूं ज़्यादा पसंद हैं। इस रंग के कपड़े ना पहना कर, ये रंग मेरी कमज़ोरी है, और नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, और बाल बनाऊँ तो किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, अब बाहर जाऊं तो किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं तो किसके लिए, एवें ना। मेरा साडा अज का टॉपिक है कि नवे जिहड़े अपने जिहड़े कपड़े तुहाडे उहदे विच किहड़ा कलर है जिहड़ा तुहानूं बहुत ज़्यादा पसंद है, वो किस कलर के कपड़े पसंद करते हो, कलर क्यों कमजोरी है, क्यों मजबूरी है, तुहाडी ऐसा किहड़ा इशू है जिहदी वजह तू यह कलर तुहानूं पसंद है, जरा मेरे नाल करना तुसां शेयर। मैं नाल यह गल्लां तुहाडियां सुणावणियां, सारिआं ने सुणनियां ने, यह गल मैं तुहानूं दस छड्डां। तो लाइव कॉल तो तुसीं आओगे, भला कितने वजे आओगे, 2:30 बजे यानी 2:30 मिनटां ते लाइव आ जाना है, और दसना है कि किस कलर के कपड़े जड़े ने वे तुहानूं बहुत ज़्यादा पसंद ने, दसने मैं तुसा। तो मैं हुण गीत सुनावण लगा, तुहानूं सुनो, इंजॉय करो, मेरे नाल रहो, तो साढ़े प्रोग्राम दे विच शामिल ने रिमशा, तुहाडा बहुत शुक्रिया, बड़िया मेहरबानियां प्रोग्राम दे विच शामिल हुई गुजराले तू, क्योंकि उन्होंने हो गई शादी और चलिया गई ने गुजरां हाले। उज़मा खान आखते ने तबीयत बहुत ख़राब है, और उन्होंने गुफ्तगू तो भी लग रहा है तबीयत खराब है, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे। यासीन ड्रैवर साढ़ा प्रोग्राम सुनते आते हैं, और आखते पे ने एक दफ़ा तुहाडे प्रोग्राम सुनता पाया, तुहानू कीती कॉल, और कॉल की वजह तो की होया कि मेरा चलान हो गया। हाय, एहतियात की करो भाई, दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना होंदा।
1: इश्क बढ़दा या तेरा मुखड़ा जिवें नी चन
0: तेरा मुखड़ा, और आवाज़ आते फसलम दी फरमाइश।

0: अस्सलाम वालेकुम
1: जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। अब्दुल अमीर फुकाबा तो हर चंद मेरा पेंड है ते बरसी वाला मेरा नाम है।
0: की हाल है सर, ठीक ठाक हो?
1: अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आ साडी भैन आई है उजमा खान
0: जी जी,
1: वास्ते सब तो पहले बहुत सारीयां दुआवां। साडी बड़ी प्यारी भैन है,
0: बड़ी नेक खातून है ना। अल्लाह पाक
1: नाम से सदका सदका पांच चंद पाक दा अल्लाह पाक तेनु फेर दे जेड़ा जेड़ा बीमार ओदे वास्ते भी दुआवां।
0: आमीन आमीन।
1: सफेद
0: रंग गुड हो गया, बहुत शुक्रिया।
1: हाँ,
0: रब रखा जी। अल्लाह बेली, अल्लाह बेली। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओ बिस्मिल्लाह खान बाबा,
2: की हाल चाल है?
0: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मैं कहता ना तुम कहने की केड़ा कपड़ा तुम्हारे नाल मजा कर रहा।
0: क्या क्या
2: कौन सा सूट आपके साथ मैच करता है, अच्छा लगता है?
0: हाँ, सही सही सही।
2: समझ गए कि नहीं?
0: समझ गए समझ गए समझ गए।
2: आपके साथ जो है ना ये पिंक कलर का है ना, पिंक कलर का
0: जी जी,
2: ये आप पहने हैं?
0: मैं पहनू?
2: हाँ ये पहनो।
0: ये तो ये तो ये तो ये तो औरतों वाला कलर नहीं है खान बाबा।
2: औरतों वाला कलर वो तो है ना सुरख गुलाबी है ना यार, पिंक कलर अलग होता है ना।
0: ओके, अब मैं जब दुकान पे जाऊँ ने कहूँ पिंक कलर मुझे दें, पिंक?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तू इधर हमारे पास डिफेंस पे आ, खान क्लॉथ हाउस पे।
0: अच्छा,
2: तुम्हें मैं कपड़ा दूंगा गिफ्ट में।
0: वाह वाह वाह वाह,
2: लेकिन ये है कि सिलाई पैसे में नहीं दूंगा।
0: ओके ओके ओके, और जो मैं आऊंगा जाऊंगा तो वो कोई किराया, कोई पेट्रोल, कोई रक्शे, कोई टांगे का किराया, कोई?
2: यार ये तो वही बात हुई ना कि भाई वो मैं दुल्हन तो मैं लाऊं तो उसको मेहंदी कौन लगाएगा?
0: अच्छा पिंक कलर पसंद। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर जब आप आते हैं ना तो मुझे बड़ी अपनाइयत महसूस होती।
2: नहीं वाह, गुलाम छोटे भाई है ना।
0: आप जीते रहे, अल्लाह पाक सलामत रखे।
2: आमीन,
0: अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। तुसी सर जब आप आते हैं ना तो मुझे बड़ी अपनाइयत महसूस होती।
2: नहीं वाह, गुलाम आपसे प्यार है ना यार, आप हमारे छोटे भाई है ना।

0: जी अमारा जी की हाल है तुहाडा ठीक हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, तुसी सुनाओ तुसी ठीक हो?
0: फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तेरे टॉपिक ते गल करवांगी कि मैंनू ब्लैक कलर बहुत पसंद है।
0: अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते एवें ना?
1: हां जी, लेकिन दादो वालों इजाजत नहीं है सानू पाउण दी, लेकिन दादो हुण इस दुनिया तो नहीं है, लेकिन असी बड़ी मुश्किल उन्हां तो इजाजत लैके ते पाना स्टार्ट कीता।
0: अच्छा एक जुमला जरा गाओ तो सही, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते। हां

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: आइए सामेईन, अब समाप्त फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा और सूरह मुबारक है बकरा और आयत नंबर है 151 and 152। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूल मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम बशकुरूनी वला तकफुरून। सदाकल्लाहु अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कमा अरसलना, कमा मैंने जैसा के, अरसलना हमने भेजा, फीकुम तुम में, रसूलम एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यतलू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर, आयातिना अपनी आयतें, व युज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करते हैं, व युअल्लिमुकुमुल किताबा और वो तुम्हें किताब का इल्म सिखाते हैं कुरान मजीद का, वल हिकमता और वो तुम्हें हिकमत सिखाते हैं, व युअल्लिमुकुम और वो तुम्हें क्या सिखाते हैं, मालम तकूनू तालमून जो तुम नहीं जानते, वो चीज़ें तुम्हें सिखाते हैं, वो हैं खातमुन्नबीन इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा अरसलना यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माबूस फरमाया और ये भी बताया कि तुम ही में से माबूस, जिन्नों में से नहीं, फरिश्तों में से नहीं, इंसानों में से ही माबूस फरमाया, ताकि कल को ये ना कहो कि वो तो फरिश्ते थे तो हम जैसा नहीं कर सकते। नहीं, हुक्म हुआ उनकी इत्तबा करें, जैसे करके दिखाया इस तरह से हम उनकी इत्तबा करेंगे तो हम उनके उम्मती कहलाएंगे। हमारे अलैकुम या यातिना और तुम पर आयातें अपनी पढ़ते हैं, अपनी तमाम जो तलावत फरमाते हैं आयतें, जो आयात हैं कुरान मजीद की, वह युज़क्कीकुम तो ये पाक कर देती हैं तुम्हें। कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है इससे हमें पाक कर दिया गया, जो जो अब इससे पाक होना चाहता है कुरान मजीद पढ़े तो पाक हो जाएगा। वह युअल्लिमुल किताबा और इसमें से किताब का इलम भी है कुरान मजीद का, जैसे आसिफ़ बरखिया के पास उस वक्त की किताब का इलम था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया कौन लाएगा तख़्त बल्कीस का, तो उन्होंने कहा आप पलक झपकें तो अभी तख़्त आ जाता है। कुरान मजीद के अंदर वक्त मौजूद है वाक़या, किताब उनके पास इलम था और वो तख़्त ले आए बल्कीस का, एक लम्हे में आगे रख दिया। तो नबी का क्या आलम होगा, जो एक उम्मती का आसिफ़ बरखिया का ये हाल था। तो इसी तरह से जो किताब का इलम है वो ये काम दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें आदाब और ज़िंदगी के, वल हिकमत और ऐसा इलम जो नबूवत की विरासत है, नूर का इलम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वह युअल्लिमुकुमुल मालूम तकूनू तालमून और वो चीज़ें सिखाई, इलम अता फरमाया जो हम नहीं जानते थे, ये कुरान पाक कह रहा है। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, बस मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, अज़्कुरुकुम और मैं तुम्हें याद रखूँगा, वश्कुरूनी वला तकफुरून और मेरी नाशुक्री ना करो, हाँ और शुक्र करो। ज़िक्र तीन तरह का होता है, एक लिसानी, एक कलबी और एक बिलजवार है। लिसानी तो ज़ुबान से हम तस्बीह फेरते हैं, पढ़ते हैं दुरूद व सलाम, ये सारा कुरान मजीद पढ़ते हैं, ये लिसानी कहलाया। और कलबी ये है कि जो हम अंदरून में अपने कलब में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अंदर महसूस करते हैं कि याद रखते हैं अंदर से, उसको इत्तबा करते हैं उसकी। इसी तरह बिलजवार है ये कि जो हम जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, जिसम से जितनी इबादत की जाएँ वो बिलजवार में आती हैं। और याद दो तरह की होती है, एक याद रखना होता है, एक याद करना होता है। याद करना में तो तस्बीह है और फिरता आदमी याद कर रहा है, और याद रखना ये होता है कि अगर कोई सामने से नामहरम औरत आ रही है और आप इधर से जा रहे हैं तो आप फौरन अपनी निगाह नीची कर लेंगे, और क्यों कि ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मना फरमाया नामहरम को देखना, तो ये आपने याद रखा। इसी तरह तमाम उसके अहकामात को जब आप याद रखें गोया आपने अल्लाह को याद रखा। फरमाया फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। जब तुम अपने तमाम मामलात में, ज़िंदगी शब व रोज़ के मामलात में तुम मुझे याद रखोगे, अज़्कुरुकुम मैं तुम्हें याद रखूँगा जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। وشکرونی ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. شکر یہ ہے کہ کسی چیز کی قدر کرنا، کوئی بھی شے اللہ نے روز رزق دیا ہے، گاڑی دی ہے، مکان دیا ہے، کاروبار دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، ان سب کی قدر کریں. جب آپ ان سب کو عزت احترام اور قدر کریں گے جیسے اللہ نے حکم کیا قرآن مجید میں، اس کے مطابق ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ سلوک کریں گے اور ان کی سیوا کریں گے، تو پھر یہ اس کا اللہ کا شکر ہوگا. دراصل یہ اللہ کا شکر ہے. تو جو شکر کرے گا، فرمایا ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کی نہ شکری نہ کرو، میرا حق مانو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
4: دس از ایف ایم 101.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay locked.
1: बेनकाब प्रोपेगेंडा वीडियो के पीछे भारतीय मीडिया और बयानिया साजी नेटवर्क सरगर्मी अमल फिताल हिंदुस्तान को फंडिंग और लॉजिस्टिक मुआवनत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फराहम कर रही है। वीडियो में अफगान तालिबान के फराहम करदा अमरीकी हथियारबाज से पीटीआई रुकन की जानिब से अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगु। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का रद्द अमल, पीटीआई दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानती। पीटीआई के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम के शोबों की सूरत हाल तशवीशनाक है। मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों के दौरे हुकूमत में हज उमरा महंगा हुआ। आबनाए हुर्मुज की बंदिश किसी के मफाद में नहीं है, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। खत्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर को
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: And then there's magic. One above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

गहराइयों में जाने दे। अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेसार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो.
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर. एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: सुनते रहिए FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: महकमा मौसमियात ने कल से जुमे तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के एक और सिलसिले की पेशगोई की है। और आज रात मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप के छठे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान व्हाइट्स को 5 विकेटों से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त राजा तौकीर साहब और उनके कुछ दोस्त हमें सुन रहे हैं जी। इस वक्त शदरा का गांव है मांदला, वहां से राजा राजक हैं, राजा आसिफ, राजा उस्मान, राजा तौकीर और राजा रफाकत हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। राजा जी टाइम में घर जाया करो। लगना आज फिर किसी की कोई ना कल नुमान मिले जो मैंने लिखा है वो मैं अब बोल नहीं सकता पता। वाह खान साहब क्या बात है जी। ये मैं सॉन्ग आपके लिए जी राजा तौकीर, आप एंजॉय करें। वैसे इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। हो जावे ते प्यार।

आज एक सबसे बड़ी जो एक चीज मैं देख रहा हूँ कि FM 101 का जो ऑफिशियल पेज है उस पे पोस्ट जो है 2 घंटे पहले जो है वो लग चुकी थी। मैंने कहा सब कहते हैं आप अपनी पिक्चर नहीं लगाते, तो मैंने कहा चले कोशिश करते हैं जी, एक पिक्चर बनाई हमने। आप तो ग्लासेस भी लग गई हैं। टॉपिक भी आपको बताया चलते हैं कि आज हम टॉपिक क्या रखेंगे प्रोग्राम में, किस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। बातचीत हम इसलिए करेंगे क्योंकि टॉपिक होना चाहिए प्रोग्राम में, कोई एक मुद्दा होना चाहिए जिस पर हम बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और आपके दोस्त जो लास्ट वीक ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत कैसी है? अब जुनी फ्रॉम लाहौर जी, अभी स्टिल ही इज इन हॉस्पिटल। लेकिन आप सब लोगों से दुआओं की अपील है कि आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, और कुछ देर पहले मेरी बात हुई है लेकिन स्टिल ही इज़ इन हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से जी अल्ताफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी सारे लोग आप लोगों के साथ मौजूद हैं और अल्ताफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान हुसैन हैं, हसनैन रजा, फैजान अली, आमिर शाह, क्या अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी, उनको भी सलाम है जी, बहुत शुक्रिया। मोहरम मोहम्मद यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, आसमा गुजर खान से हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छा प्रोग्राम है और थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जाने जा।

तो मेरे दोस्त की बात हुई है, तुम अपने दोस्त के हवाले से ही आज टॉपिक रखेंगे, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऐसा इवेंट गुजरा है और 14 अगस्त का, और उसके बाद अभी क्योंकि मैं बेसिकली पहले जो बिलोंग हम कर रहे थे, अभी क्योंकि वहाँ पे डिमोलिशिंग हो चुकी है, तो काफ़ी सारे हम दोस्त जो हैं वो दूर दूर चले गए हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, इवन कि पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि बड़ी माम का जो इलाका है, मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अब आएगा हूँ, मेरा जो है वो मरी है वो भी पता है। सो अमजद जो है इस वक्त जो मेरे दोस्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो और मैं बहुत हमने जो है वो घूमना फिरना, खाने खाना, एंजॉय करना, तो ये पहला ऐसा मंच गुजरा है कि ईदें भी गुजरी बीच में, लकड़ हो गया हूँ। कैसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपका साथ देता है? आए दोस्ती दोस्त है ना आपके, है ना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं? आई एम इकरा फ्रॉम सराय आलमगीर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अगेन इकरा, शो नाइस एंड वाइस सुपर। और गला मेरा इस वक्त खांसी

ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपका साथ देता है। आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों की पार्टिसिपेशन 0511111019025440 हमारा कॉलिंग नंबर है। अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आपने सेंड करना है 4471 पर। फेसबुक का स्टेटस जो है वो 8 बजे से लगा हुआ है।

0: होप सो कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के पार्टिसिपेशन में आप शामिल करूंगा जो आप कॉल कर सकते हैं 0511111001।
1: तेरे मुखड़े के गीसो जैसे सावन की घटाएं, झुकी झुकी सी निगाहें, कितनी है तेरी अदाएं मेरी जान।
0: ओ मुझे लाहौर में भी हमें सुना जा रहा है, सो लाहौर के लिसनर्स को भी हम वेलकम करेंगे और जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है सबको वेलकम। सना राजपूत हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम हर शर्त मिल के सर अंजाम देते हैं। अगेन एक ग्राम प्लीज एक सैड सॉन्ग लगा दें जी, लगाएंगे 11:30 की ब्रेक के बाद हम जो है वो सारे ही सैड रोने धोने वाले गाने लगाएंगे आज।

0: कौन लोग हो यार तुसी? 10 बजे हुए जाते हैं जी, 35 मिनट आम का मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक ठाक रात के 12 बजे तक, और देखते हैं कौन कहां से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। पुराने कॉलर लगी जा रहे हैं, पता नहीं की खादा है तुसी, मैंने समझ नहीं आती थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो दो नंबर से मेरा भाई ट्राई कर रहा था, मुझे दोनों नंबर जुबानी याद है, पता है।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
1: एड में फिर क्या है मेरे दोनों नंबर के?
0: हैं?
1: एड में मेरा नंबर एंड के एंड में क्या है?
0: एंड में अब मैं क्यों बताऊँ आपको?
1: सिर्फ दो इंच से बता कर हम समझ गए कि वाकई आपका नंबर मालूम हो रहा है।
0: मुझे सच में याद है बस।
1: नहीं ये नहीं बताया करो लोगों को, फिर और लिस्टर के लिए शिकायत करेगा, फिर बाकी आपके में रोना डालेगा।
0: नहीं नहीं नहीं क्यों,
1: करेगा
0: कोई बात नहीं, क्यों नहीं है, ऐसे नहीं रिसीव करेगा, हम तो रिसीव करेगा ना।
1: नहीं वो बाकी लिस्नर को मैं सुनता हूँ सुबह के टाइम या इवनिंग के टाइम में, कुछ लिस्नर पर हम लोगों की कॉल रिसीव नहीं करा आरजे, उसको बोल रहा है कि हम लोग आप लोगों के नंबर हम लोगों की नजर नहीं आ रहा है।
0: छोड़े यार आरजे, इतना वेला नहीं होता कि लिस्नर्स के कहने पे किसी की कॉल जो है वो उठाएगा नहीं उठाएगा। हम आपका हो गया, इश्तियाक साहब हो गए, परेड अवान साहब हो गए, इनके नंबर तो मुझे मतलब ऐसे याद है जैसे आहो
1: हम लोग तो प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, हम लोग दिल से मिलाते हैं।
0: बिल्कुल जी, नजर आ रहा थोड़ा प्यार, देखा नहीं है?
1: बिल्कुल, मेरा प्यार जो है वो दिल से मुझे पता होता है।
0: हाँ मेरा प्यार तुम ही हो।
1: बिल्कुल।
0: और सुनाए, ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपका साथ देता है?
1: वो हिकमत मलाखेल है।
0: वो भी मलाखेल है?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब हम लोग लाहौर में जाते हैं उसके भी लाहौर में शॉप है, जब मुझे कोई पैसों की जरूरत होता है या उसके पैसों की जरूरत होता है या मेरा शॉप में किसी के पास जब चीज खत्म हो जाए तो फिर वो मुझे देता है, वो पर जब आपका सामान आ जाए फिर मुझे दे देना। इस वजह से
0: सही ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: साला आपको हमेशा खुश रखे, ठीक है। पिछले संडे को मैंने काम नहीं किया था, कोई टाइम इंटरनेट बंद था।
0: ओहो शुक्र है यार, जान छुट्टी मेरी। ओके
1: अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये ले जी, मैंने आपसे पहले कहा मुझे त्रेड़े वान साहब का नंबर भी याद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, क्या हाल है, खैरियत है?
0: शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जितने भी पहले हमारे जो रेगुलर लिसनर है पहले उनको मैं भुगता लूं एक ही बार में।
2: अल्लाह पाक सलामत रखे, तो सुना लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि केतु वाली पहाड़ी के चरण ने बराबर एक काल बलावा तो
0: सारे शोर। नहीं जी कोई नहीं है, दो चार तुसी लोग सुन
2: रहे हैं। अच्छा अच्छा ये रखा था जी, मेरी काल मिल गई। सारे ना पहले सुना मैं कहता कि साथ ही तुसे मैं गल करना कि तुसे आज एक शो अपने एक गाना लावना कुरतुल ऐन का एक शो में लगाया था, उसे मेरी कॉल नहीं मिली, तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था।
0: कौन सा
2: मुझे नहीं याद नहीं है, कोई भी पूरा रोल एन का लगा देना क्योंकि मुझे बोल नहीं है याद, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था आपने गाया था 2-3 वीक पहले।
0: अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ, मुझे अगर याद आ गया तो ठीक है।
2: जी जी बहुत शुक्रिया। और टॉपिक के मेरे वो दोस्त थे जिसने मुझे शादी कराई थी, हर हाल में ही साथ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कहीं गाड़ी कराची तक बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, गाड़ी किसी का कोई मतलब कोई खराबी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट किसी शहर में भी हो जाता है तो पंप वालों का हवाला देते हैं, पंप वाले मरम्मत करते हैं, रोटी पानी देते हैं, संभालते हैं, नेकी करते हैं, वो काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी गाड़ी जो है आ रही थी तो रास्ते में भाई बहन को जस्ट मैट्रिक का पेपर देवाने के लिए लेके जा रहा था तो बारिश हुई थी तो उसने लॉन्ग साइड पर उसने मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की तो उसकी बहन उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बहन ही उसकी करंट वाले जिलों के नीचे आकर ना उसकी डेथ हो गई। तो उधर भी कोई हमारा उन भाइयों ने मुकाया है, पाप वालों ने हमारा जो है एक दो दिन हमारा ड्राइवर अंदर रहा है। बहरहाल
0: चले अल्लाह खैर करेगा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। अच्छा जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। देखते हैं अगर हमें सॉन्ग वो मिलता है तो हम जरूर शामिल करेंगे, अगर गला ऐसे खराब होता है तो फिर कैसा होता है। सच में गला खराब है। बोलो बोलो बोलो ना, ऐसे तो बोलते रहते हैं। ऐसे मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्या आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको बगैर एक दिन भी जो है वो अगर नहीं रह सकता है, और कोई भी अपनी जिंदगी में इतना मशरूफ नहीं होता है कि वो अपने खास शख्स के लिए चंद लम्हे भी ना निकाल सके। इसलिए बेवकूफ बनना छोड़ेंगे, इंजॉय करें जैसे आप कर रहे हैं। कौन सा इतना मशरूफ है बंदा कहे कि क्या 13-14 अगस्त को क्या ट्रैफिक प्लान आपने तरतीब देना था। बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो बोलो, एक्सक्यूज दो। अब ना ये भी नहीं कह सकता कि हमने तो सेलिब्रेशन भी नहीं किया, सियापे देखा है न्यू ब्लीवर यार।

करके बताएंगे जो कुछ वो मेरे पास नहीं है। पहले तीन लाइनों वाला नहीं, उसके बाद वाला जो है वो सब है।

थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स और फेसबुक के कमेंट्स में शामिल करूंगा न्यूज़ हेडलाइंस के फौरन बाद। और मैं खुद अपनी सबसे अच्छी दोस्त हूं, मैं खुद ही अपने लिए सब कुछ सबसे पहले करती हूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहजानी मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है, लेकिन आवाज़ आपकी बड़ी शानदार लग रही है।

0: सोचिए टॉपिक है कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपका साथ जो है वो देता है और देता है साथ ना करें सच्ची। मैं को ढिसा हो जाऊं सभी आप लोगों की कॉल्स मजीद शामिल करेंगे 0511111001 और मलक इश्तियाक साहब की भी कॉल आ रही है। क्या बात है, मतलब कोई नवा बंदा तुसी आने ना देओ बिच ना। मैंने कहा मुझे सब के सब याद हैं कौन कौन जो है वो कॉल कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद यूसुफ भाई, क्या हाल है?
0: शुक्र अल्लाह का जी, तारुफ करवा दे, लाहौर से आप आई थिंक बात करते हैं।
1: माशाल्लाह, अब्दुल गफूर मवर बात कर रहा हूँ, कराची से ताल्लुक है मेरा।
0: अच्छा, आप कराची से हैं? सॉरी
1: जी भाई, बात लाहौर से कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: तो आपने बड़ी सरकार का बताया
0: जी जी,
1: मेरे को 72 की याद आ गई।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे हम बड़ी सरकार जब गए थे वहाँ पे
0: जी
1: 72 के अंदर, तो मेरी 21 साल की उम्र थी ना।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी जो रिविश कर रहा था उसके व्हील दोनों जो है ना फंस गए नीचे, पहाड़ के नीचे गिरने वाली गाड़ी थी वो। अंदर से बड़ा बौखलाया हुआ था, बड़ा परेशान कि अब मेरी गाड़ी गई नीचे, तो बड़ी ऊंचाई पे था। तो अब जो है ना, हम दो दोस्त थे, दो चार और बंदे थे, उसको देखा, उसकी कैफियत देखा, हमने कहा तुम आगे जो है ना स्पीड से इसको निकालना, हम इसको उठाते हैं। और अल्लाह की कुदरत या अली करके ना, पता नहीं उसके जिन्नात थे अली के चाहने वाले क्या थे, उन्होंने उठाया गाड़ी, ऐसी फेंकी उसकी, वो बंदा खुश हो गया, बच गया
0: जी।
1: यकीन करेंगे, मेरे को वो याद आ गई जब आपने कहा ना कि मैं बड़ी सरकार का हूँ। तो पापा जी, मैं पिंडी भी रह चुका हूँ 72 के अंदर, सदर के वो ये क्या कहते हैं बैंक रोड पे, वहाँ पे जो है ना हम शटे वटे कैरलिन की और बेचते थे, उस जमाने में रंगीन होती थी उस दौर का वो जब। तो वहाँ पिंडी वाले दोस्त थे, उनको भी गाड़ियां भी लगवाते थे। चुका हूँ 72 के अंदर सदर के वो ये क्या कहते हैं बैंक रोड पे, वहाँ पे जो है ना हम शटे वटे कैरलिन की और बेचते थे, उस जमाने में रंगीन होती थी उस दौर

0: अच्छा
1: बाकी मैं इंसानों को दोस्त नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा
1: कोई दोस्त है, हर का हर जगह मुझे काम आता है वो।
0: क्या बात है,
1: ना बीवी बच्चा ना घर वाले यार दोस्त कोई भी नहीं है उस जात के सिवा, नहीं है जिसके पास हमने जाना है, वही मेरा वाहिद दोस्त है।
0: ठीक ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ठीक है,
1: आप मेरे क्लिप देखना यार।
0: अच्छा जी, देखते हैं जी, क्लिप ही देखते हैं, असि अपना क्लिप नहीं देख रहे हैं, साडा बाला ना क्लिप है। जी मैंने कहा चले इनकी अभी बात की, इनको भी बिल्कुल उस्ताद तो पहले मुझे नहीं कहना, मैं उस्ताद तो बिल्कुल नहीं
1: मेरा तो नहीं आता ही आके बिस्मिल्लाह करा।
0: हाँ,
1: तो बिस्मिल्लाह करा।
0: मेरा नाम नहीं मेरा नाम मोहम्मद,
1: बड़ी टोक मारी आज।
0: ओ नहीं, मेरा नाम यूसुफ है।
1: तो साथ आ रहे हो के बिस्मिल्लाह करा, सुनना नहीं बंदा, कर रहे हो ने तो आड़े कोई जिला रहा है तो आए हो बुड़ी के जो।
0: हां जी,
1: एक बंदे आ गया है दाढ़ी।
0: हां जी,
1: वो भी हो पता भी छोटा पे हो जी।
0: अल्लाह जी,
1: ओला ने काल ना करे, वो आड़े ने बुड़ी जाओ तेरी बेइज्जती कर रहे
0: हैं। नहीं नहीं नहीं,
1: मेरे उस्ताद है वो।
0: नहीं जी, मैं उस्ताद नहीं हूँ, लेकिन मैं बेइज्जती क्यों करूंगा आपकी।
1: खुदा की कसम उसने बोला है कि वो कहते हैं जब कैदर जिला रावत आए हो ना रावत बिस्मिल्लाह करो करा, मैं तो बेइज्जत कर रहे हो तो कह रहे मैं बुड़ी के छा। उस बंदे ने आज दिल को भूल गया जो एक कालर है, तो मुझे मेरे कहा मेरे उस्ताद है आज भी कल भी परसों भी और हमेशा के लिए।
0: हाँ, मैं छोटी जो फोस्की है ना जिसका इंजन वो बैक साइड पे था वो मैं खोलता हूँ, ये मेरे शागिर्द है।
1: उस्ताद जी गल छोड़ो,
0: सुनाओ
1: ये टप क्या रखा है। मेरा तो दोस्त हो एक ही हो सकना जेड़ा बड़िया गलतियां, मैं गलती करना भी आता गुजर कर देना, मेरा दोस्त भी हो सकना, मेरा भरा भी हो सकना।
0: ओ त्रेड़वान साहब
1: ना,
0: हाँ
1: एक और बता है
0: इमरान खान
1: ना जी,
0: गजेंद्र करी
1: मैंने
0: तो बोला था
1: भाई मेरी गलती को दलगुजर कर देता है, अगर मैं गलती कर भी जाऊँ तो माफी मांग लेता हूँ, तो मुझे वो माफी दे देते।
0: ओ अल्लाह,
1: इसलिए मेरे वो उस्ताद भी है, मेरे दोस्त भी है और सब कुछ है मेरे,
0: मेरे
1: और मेरी जिंदगी भी है।
0: ओए होए होए होए,
1: आप मेरी जिंदगी भी है, आज गाना सुना देना जा,
0: मैं सुना दूं,
1: मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है उस्ताद जी।
0: ओए होए होए होए होए,
1: आप बिस्मिल्लाह करा, यकीन जानो जिला श्रेयो पे बड़ा खुश होना खुदा की कसम, मैं यकीन जानो मैं बीमार है, मैं बजिया पर भी व्हील चेयर पर आने कटे, मैं चल फिर ना सका, मेरी लड़ डैमेज हुई और मैं बीमार है बड़ा सा, तो मेरे वास्ते दुआ भी करे ये उसरे यूसुफ मेरे उस्ताद उसरे यूसुफ, मैं थानू लकब दिता उसरे यूसुफ।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, तुसा गाना सुनो, तुसा नहीं पसंद ना गाना लाया मैं, ठीक है तुसा सुनो।
1: बड़ी मेहरबानी बिस्मिल्लाह उस्ताद जी, आज वो पता भी जड़ा विदा विदा हो गया जी, जिंदगी आ गया।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, गाना सुने आप एंजॉय करें, लाइव परफॉर्मेंस है और ट्रिब्यूट है उस्ताद मेहरी हसन खान साहब को, लेकिन क्या गाया सच में। जब तक ना देखूं तुझे सूरज ना निकले,
2: जब तक ना देखूं तुझे सूरज,
0: क्या कहते हैं तुम कैसी मोहब्बत करते हो, हम ऐसी मोहब्बत करते हैं।

कि जब तक ना देखूं तुझे सूरज ना निकले, जुल्फों के साए साए महताब उभरे, मेरे दिल का होश तू है, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है।

एक मैसेज है कि जी नज़रअंदाज करने के बजाय कुछ तो बताएं, अब कहाँ मैं खुद में बुराई जो है वो ढूंढूं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा नज़रअंदाज करना, लेकिन जहाँ फीलिंग्स, इमोशंस और सब कुछ होता है, वहाँ पे फिर उसी के लिए होता है। अभी हम खुद किसी ऐसी कैफियत में हैं कि

मैंने कहा थोड़ा सा आपको अच्छा सा म्यूजिक भी सुनवा देते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंटल आज ही मैंने जो है वो चेक करें। मैं आपको इतना वैरायटी ऑफ म्यूजिक जो है वो लेके आता हूँ, और कोशिश होती है कि जो चीज़ आपके कानों को अच्छी लगे, आपके दिल को भा ले। हम तो भाई नहीं, म्यूजिक ही भा ले। अब मैं ये भी नहीं कह सकते इस टाइम इंसान जो है वो नींद में है, क्योंकि 3 बजे तक तो वैसे नॉर्मल शोज चलते रहते हैं, स्पेशली सैटरडे और फ्राइडे। सैटरडे आपके लिए बड़ा स्पेशल होता है, क्यों ना?

वो कहती है कि जी इस गर्मी में भी घांसी और फ्लू हो रहा है जी, अजीब भी सिस्टम है। अब तो इतने हसास हो गए, वो क्या शेर था कि फूल मारो तो चोट लगती है, इतने हसास हो गए हम।

वैसे एक सॉन्ग है उसका, एक पार्ट था मुझे वैसे दिमाग में आ गया तो मैंने शामिल कर दी। वैसे सॉन्ग बड़ा अच्छा सॉन्ग है। क्या खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल है, थैंक यू सो मच सर, और यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस।

ग्यारह बजकर 11 मिनट हुआ, चाहते हैं 1:01 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, अपनी घड़ियां ठीक कर लें अगर आपने किसी को वक्त दिया है तो वक्त की कदर करें। और अगर ड्राइव करते हुए आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। गाड़ी बहुत ही एहतियात से चलानी है आपने, क्योंकि बहुत खूबसूरत सी जिंदगी आपके साथ जुड़ी हुई है।

आप सुनते हैं हाले दिल मेरा, ये अनायत है मेहरबानी है, वरना मैं क्या मेरी हकीकत क्या, इस कदर बस मेरी कहानी।

हमें जिंदगी निभाना। ग्यारह बज के हुआ साथ हैं सामान 15 मिनट, आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करें, लेकिन इसका एक अंतरा है आगे। वो जो मैंने शेर अचानक से मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा चले वही शामिल कर देते हैं।

0: अगर आप गमले स्मेल मारेंगे फिर तो बहुत ही शदीद चोट लगेगी। 0511111001 अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से?
1: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। आप सॉन्ग कितने अच्छे लगाते हो?
0: सॉन्ग्स कितने अच्छे लगाता हूँ? अच्छा,
1: आपने मेरी फ्रेंड के लिए भी एक अच्छा सा सॉन्ग लगाना है।
0: अच्छा सॉन्ग्स लगाना है। अच्छा,
1: मेरी फ्रेंड है सिंह से दरक्षान और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
0: अच्छा,
1: वैसे मेरे दोस्त तो बहुत है और जितने मेरे दोस्त हैं उससे डबल ट्रिपल मेरे दुश्मन भी हैं। तो ये लड़की जो है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? तो इसका नाम भी इतना यूनिक है, दरक्षान। जब मैं किसी को बताती हूँ वो कहते हैं ये लड़का है ये लड़की है, तो मैं कहती हूँ लड़का है भाई। तो ये सीन है। तो ये बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तो आपका जो टॉपिक था उसको लेके बड़ी एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में मैंने अपने भाई को कॉल की कि भाई मुझे बैलेंस करवा दो, मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो वो कहता आधे घंटे के बाद करवाऊंगा। मैंने कहा हाँ मुझे पता है तुम्हारे आधे घंटे के बाद करवाओगे ना, तो फिर बस नहीं करवाना, अब भी करवाओ। उसको धमकी दी ना उसने, फौरन करवा दिया। मैंने कहा आधे घंटे बाद तो शो तो चला जाएगा, शो तो गया। मैं सोच रही थी दिल में, फिर उसने फौरन बैलेंस करवाया। तो आप तो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है बस आप सोच रहे थे कि आज रेगुलर लिसनर्स या कॉलर्स का ही इनकी कॉल लूंगा, बाकी बाकियों को इग्नोर करूंगा।
0: नहीं नहीं, साल है ले, साल है ले, तुसे तुम्हारी कॉल मिल गई है।
1: अच्छा, उसके लिए ना मतलब अच्छा सा सॉन्ग आपने प्ले करना है, ठीक है? ये ओल्ड वाला सॉन्ग नहीं, कोई न्यू वाला सॉन्ग, जैसे आप पहले पहले प्ले कर रहे थे ना वो रॉक स्टार जैसे पॉप सॉन्ग, उस तरह का कोई अच्छा सा।
0: ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने लाहौर से हमें कॉल की है 0511111001। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से तारुफ करवा दें?
2: जी मैं अब्दुल हमीद फरुखाबाद।
0: अच्छा, कैसे आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी?
2: अब्दुल हमीद फरुखाबाद गाँव हरचंद से बरसियाला।
0: अच्छा जी, सुन लिया, समझ आ गई सानू। हमीद साहब की कहना सर?
2: हाँ बहुत बढ़िया शो, माशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, बहुत प्यारे गाने अच्छे लगा रहे हो।
0: अच्छा, कोई दोस्त है?
2: दोस्त दोस्त तो नहीं, मैं बोलूंगा हर साल मेरी है बेटी। ओके सुखे बड़े हर साल मेरा नाल साथ है।
0: क्या बात है जी,
2: बेटे भी है नहीं, जो बेटी है ना।
0: क्या बात है,
2: लड़की है ना उसके नाल की, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।
0: चले जी, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, आपका साथ भी देती हैं।
2: बाकी सलीम केलर, राजा चौधरी, एहसन खान,
0: अच्छा
2: न्याज लेवर, वसीम अहमद, आर जी वसीम अहमद, वन वन और भी सुनता पिया।
0: अच्छा,
2: बहुत सारी इनिला भी आएगी।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं तो समझे खाली इश्तियाक साहब ने, इतने भी माशाल्लाह काम सिद्ध ही है।

थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट टाइम जी आपको तंग नहीं करेंगे जी, बिल्कुल नहीं करना आपने तंग, ठीक है? अच्छे बच्चे। अरे मंजूरा कहती हैं कि जी हमारे लिए भी कोई अच्छे से सॉन्ग चला दें। हम इसलिए जालिम तेरा चर्चा नहीं करते, आशिक कभी माशूक को रुसवा नहीं करते।

0: आपको ये जल्दी से कुछ कॉल्स जो है वो शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में और फिर हमें बढ़ना है अपने स्पेशल सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स की तरफ, और सिर्फ हम आपसे सलाम दुआ करेंगे और आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनका नाम पूछेंगे। That's it. जी कौन कहां से?
1: आपकी आवाज बहुत कम आ रही
0: है। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, अब ठीक आ रही है?
1: अब थोड़ी सी ज्यादा हुई। साजिद आ रहा हूं और से।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: साजिद।
0: साजिद कैसे हैं आप, ठीक हैं?
1: अल्लाह की मेहरबानी, आप अमरस रहे।
0: और
1: मैं आरजे हमारे वसीम भाई हैं, 93 पे उनकी मैंने दो अनाउंसमेंट हो रही थी, रियाज भाई का प्रोग्राम चल रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम वो भी चल रहा था, उसका नाम वहाँ पे अनाउंस हो रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वसीम भाई और चैनलों को भी ज्वाइन करते हैं।
0: नहीं समझ है, आपने सब कुछ जल्दी में बोल दिया, कुछ समझ नहीं है क्या कह रहे हैं?
1: अच्छा समझ भी नहीं आई, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
0: जी जी करिए।
1: वसीम भाई हमारे आरजे है 101 के।
0: अच्छा।
1: और 93 हमारे लाहौर का चैनल है और रियाज भाई पेश करते हैं प्रोग्राम, ठीक है?
0: जी जी।
1: वहाँ पे वसीम भाई का नाम जो था ना अनाउंस हो रहा था।
0: अच्छा।
1: उसकी शमूलियत थी उस प्रोग्राम में।
0: अच्छा।
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वसीम भाई को बहुत सारी दुआएं और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं, चार से दो से चार बजे वाला।
0: तो अभी ये बताने का क्या मकसद था शो में?
1: मसला ये है कि मैं हम वसीम भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने
0: आप उनसे मोहब्बत करते हैं?
1: जी बिल्कुल, बेअंतहा मोहब्बत।
0: तो मैंने तो टॉपिक रखा है, ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ देते हैं, इसमें वसीम भाई का और मोहब्बत का ताल्लुक तो था ही कोई नहीं।
1: हाँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक दोस्त था मेरा और अभी कुछ महीने पहले उसकी डेथ हो गई, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ और बचपन से लेकर अब तक हमने एक दूसरे का साथ निभाया और हर एक दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया। जब माली तौर भी हम कमजोर हो जाते, कोई जरूरत पड़ती थी तो वो मेरी हर जरूरत पूरी करता था।
0: अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। भले कोशिश किया करें कि टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो बात करनी चाहिए, बाकी ज़ाहिर सी बात है वसीम भाई अगर इतने अच्छे महान आरजे हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी और चैनल पे भी वो इनवाइटेड होंगे और सुन रहे होंगे। तो पहले आप ना कोशिश किया करें, जो रेलिवेंट हमने बात की है ना, पहले आप उस पर बात किया करें, फिर हम वसीम भाई की भी तारीफ़ कर लेंगे। वसीम भाई अगर 101 का हिस्सा हैं, ऑब्वियसली 101 लाहौर से, इस्लामाबाद में तो नहीं होते हैं, तो उनके लिए जी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला मज़ीद उनको कामयाबियां दे। 051111 0101 प्यार नाल ना सही गुस्से नाल देख ले अगर तेरा दीदार चन्ना साड़ी मजबूरी है, रोज तेनु तकना बड़ा ही जरूरी है। 051111 0101 अस्सलाम वालेकुम। Hello, can you hear me now? Okay, thank you so much. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Ji kaun?
2: Kya hal hai shuzba, kaise hain aap?
0: Ji naam bata dein apna.
2: Saira baat kar rahi hai Bahrain Enclave se.
0: Saira baat kar rahi hai Bahrain Enclave se. Kaise hain aap? Theek hain?
2: Theek ho, Allah ka shukr alhamdulillah. MashaAllah, bahut tera show bahut achhe ki baat suna.
0: Achha.
2: Acha lag raha hai. Acha
0: show hai. Acha wo jo regularly aap suna karti thi pehle wo hi hai.
2: Ji ji.
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और तबीयत से ठीक है आपकी? चलो ठीक है, सही है। तो कोई दोस्त के बारे से हम बात करें, ऐसा कौन सा दोस्त है जो हमेशा आपका साथ देता है?
2: बस दोस्त था।
0: था? अच्छा।
2: था, जो भी है दोस्त थे, अम्मी थी बस, उनके अलावा कोई दुनिया, माँ के अलावा कोई दोस्त नहीं होता। जो माँ होती है ना, हर बात अपने माँ से शेयर करते हैं, बस थे चलेंगे इस दुनिया से,
0: अल्लाह
2: अच्छा
0: ठीक है, बेशक जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। 051111 0101 अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: शुक्र अल्लाह का। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोस्त के वाले से हम बात कर रहे हैं, कोई दोस्त हैं आपके?
1: जी मेरा दोस्त तो बहुत है सर, बाहर मुल्कों में है सर।
0: बाहर मुल्कों में होते हैं, नाम ले सकते हैं आप इजीली?
1: हम पाकिस्तान में है सर, हमने
0: तो इतने उदास क्यों हैं पाकिस्तान में? कोई मतलब आपको कोई डक के रखा हुआ है?
1: जी बस पाकिस्तान हमारा अच्छा मुल्क है सर।
0: अच्छा चले, अच्छा चले, वैसे जितनी बोझल आवाज में आप बात कर, सॉरी।
1: और आपकी पूरी टीम को सलाम सर।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: और सर मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो आपको बताता होता हूँ मैं, बाबा बुल्ले शाह का जो बाबा बुल्ले सरकार का जो शेर है ना, वो जरूर पढ़ा करें।
0: याद करा दे मुझे, मैं भूल जाता हूँ। अब मुझे याद नहीं है ना, काफ़ी सारे हैं मुझे, अब ज़ुबानी भी कुछ याद हैं, कुछ मैं देख के पढ़ता हूँ, लोग समझते मैं हाफिज़ हूँ, मैं देखता हूँ, मैं नकल मारता हूँ यहाँ से।
1: अच्छा जो भी आया सर,
0: अच्छा
1: इश्क के बारे में,
0: अच्छा इश्क वाला
1: याद नहीं
0: कि बड़ा इश्क, इश्क तू करना है।
1: जी जी जी वही वही।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी, आप सुने, ठीक है जी सुने आप, जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप कॉल कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं इस वक्त एंसर्स इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ। सो नो मोर लाइव कॉल्स एंड वेलकम टू स्पेशल सेगमेंट गोली गोली नंबर्स। के बड़ा इश्क, इश्क तू करना है, कदे इश्क दा गुंजल खोलता सही, तेनू मिट सुख घट ते दर्द हजार मिलन, कदे इश्क नू तकड़ी तोलते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदे सानू अंदरों फूलता सही।

कि हमारी बेबसी रूह को नोच लेती है। उसे क्या इल्म हमें हिजरत नोच लेती है। ये कैसी बेनियाजी, कैसा तर्ज उल्फत है। मोहब्बत लब पे आ जाए तो फिर हिम्मत नोच लेती है। ये दिल भी अजब शय है, फना होना भी चाहे तो उसकी याद फिर जीने की चाहत नोच लेती है। और हमें आदत है अब दर्द मुसलसल के उजाले की, मगर हर सुबह फिर एक शाम, मगर हर सुबह फिर एक शाम हश्त नोच लेती है। हमें आदत है अब दर्द मुसलसल के उजाले की, मगर हर सुबह फिर एक शाम में वह हश्त नोच लेती है।

पेश करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, बेशुमार करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, बेशुमार करते हैं, उठ के रातों में आप पर अक्सर आयतों का हिसार करते हैं। दिल तो बदले में हमको दे दीजिए, दिल तो बदले में हमको दे दीजिए, हम यहाँ जान निसार करते हैं। आज भी रात भर ख्यालों में उनसे बातें हजार करते हैं। पहले दुश्मन ही कत्ल करते थे, पहले दुश्मन ही कत्ल करते थे, आजकल दोस्त यार करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, बेशुमार करते हैं।

जब तक ना देखूं तुझे सूरज ना निकले, क्या हर कहीं दे बारस हण शाकर, हर कहीं दे बारस हण शाकर, साकू रज के लुट साडा कोई काई नहीं।

रंगो रस की हवस और बस, मसाला दस तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस ठस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, क्या खूबसूरत लाइन है। कि उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस। कि हुस्न क्या चीज है वक्त के आगे, तू कयामत सही ता कयामत नहीं। गल नाल के को लावा तेरे बगैर जीवे, गल नाल के को लावा तेरे बगैर, गल नाल के को लावा तेरे बगैर जीवे।

ओके जी, आप लोगों से अब इजाज़त लेने का वक्त बिल्कुल आम पहुंचा है। और कहते हैं कि इश्क में सुनते तो थे लुत्फ जवानी और है, मगर जो गुजरी है हम पर वो कहानी और है।

कोई भी अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं होता कि वो अपने खास शख्स के लिए चंद लम्हे भी ना निकाल सके। तो ज्यादा टाइम अभी गुजरा नहीं, अभी ऑलमोस्ट कह भी सकते हैं कि पूरा एक दिन भी अभी नहीं गुजरा है। अच्छी रौनक है, अच्छे मामलात हैं जिंदगी में, इंसान

बहुत उलझन है और कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी से हम इतनी जल्दी जो है वो हार मान लेंगे। क्या कि अब थकने लगे हैं, अब जो जैसे है उसको वैसे ही ठीक है। कि बार हाँ कोशिश करें तो सब बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वन साइडेड जी फैसला नहीं कर पाते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है लाजमी है। अपने पसंद, अपनी नापसंद, अपने जज्बात ऐसा सा इट्स वे बैक। आई हैव अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, जब भी मुलाकात होगी, Hopefully, एक नए आजम के साथ और भूले नहीं होंगे आप। Let's prove it. ये आपने साबित करके दिखाना, you don't have a short memory. Allah Hafiz.

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।

0: कह दो, मुझको यही इरशाद हुआ है कि उस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने उसको मोहतरम और मकाम अदब बनाया है, और सब चीज उसी की है, और ये भी हुक्म हुआ है कि उसका हुक्म बरदार हूं।
1: وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ

0: और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ, जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और ना तो खौफ करना और ना रंज करना, हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुँचा देंगे और फिर उसे पैगम्बर बना देंगे।
1: फल तक